आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM 94।

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03131394941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा सता सुखार पर सवाबई की होम।

0: सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजों ना ना उम्मीद शु बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर ना बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणिस्त सुविधा कतासु

0: back, right after the commercial break. We'll be back, right after the commercial break. We'll be back, right after the commercial break. We'll be back, right after the commercial break. We'll be back, right after the commercial break. We'll be back, right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है. जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है. लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं. ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो. और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है. हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है. जेर निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं. उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है. चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में. यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है. क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है. अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941. आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. कुदरती शिफा, दिल से दुआ. कुदरती शिफा, दिल से दुआ. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी.
2: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा.
2: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वेरायटी मौजूद दा
3: नुदा सिवाया कना
2: शारजा ज्वेलर्स. शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स. फोन 0938273265.
4: कामयाबी की नई मंजिल की तरफ पहला कदम उठाएं. कायद आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में FSC फर्स्ट ईयर में दाखिले और रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है. FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में अभी दाखिला हासिल करें. जदीद क्लासरूम्स, तजुर्बाकार असातिज़ा, बेहतरीन तालीमी माहौल और शानदार नताइज के साथ हम आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरअज़म हैं. हमारे कैंपसेस मौजूद हैं शमसी रोड मर्दान, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, हकीमाबाद नौशहरा, सवाबी, जैदा और मैनी चौक कोठा. आज ही अपने करीबी कैंपस का विजिट करें और दाखिला यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और दाखिले के लिए हेड ऑफिस के नंबर 0938-28-0103 पर राबता करें. कादी आज़म ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जहां तालीम बनती है कामयाबी की जमानत.
5: एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द दोनों इलाजों ना ना उम्मीद शुरू बीमारा नो दोपारा द जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासो पखार सवाबई की पुरानी सुविधा के तासु के हम

मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा सुखार पर सवाबई की होम।

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा सा सुखार पर सवाबई की हूँ द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वानो इलाजुन ना उम्मीद शुरू बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक
1: बिल्कुल जनाब जो तासुलार अगले मोजो तासुलार रसीदले माया
0: जनरल अस्पताल
1: शुरू कुम पनामा द रबीजुल जलाल ची डेर बहुन के मेहरबान अजीम जाते जी
0: पे खबर न बल्कि द
1: यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
0: हैदर मुमन होम्योपैथिक
1: द टोल नौलान दी जमा सलामुना जमा समडी रमीना
0: जनरल
1: पखपल जानुनु बांदी कबूल और मंजूर कीजिए
0: अस्पताल
1: यानी अस्सलाम वालेकुम
0: ब्रांच
1: एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पदी टीम की जमावास कम कम देखियो और इदले की चरत चरत की और इदले की द एफएम 94 द रेडियो दिलवर द सवाबई पदगली के बांधी दाम खाल जमावास कम कम जेतो हम रसी की चरत चरत की हम रसी की हगो टोलता जमाल तरफ आसम डी डी सलामुनो सम डी रमीना पखपल जानुनो बांधी
0: सुखपली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज
1: कबूल और मंजूर कीजिए माते वेले की सासु कोरवा सासु मलगरे सासु कदरमन यानी की आरजे अब्दुल बासित मुमंद सासु पदरानो ख्वागो खिदमत के रागले मौजो तासुला रा हाजिर शिवे मजी
0: हैदर मुमन
1: हाजी पदी प्रोग्राम की जो यवाजी नहीं बल्कि हमेशा तल्ले जमंग द अतु बजुन वाले तर द नहु बजु पूरी चिकम प्रोग्राम में एफएम 94 द रेडियो दिलबर सवाबई बांधी द जमंग द सेहत पाड़ा बांधी प्रोग्राम संग चिता सुत जमुंग दा प्रोग्राम हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल पो
0: ब्रांच
1: खुसूसी मरस्त बांदी तासुता उड़ांदी की जमुंग दा अस्पताल पो सवाबई के पो मेन जहांगीर रोड बांदी पो शाह मंसूर के द शाह मंसूर बाबा मदरसी सरा बिल्कुल दीवाल ब दीवाल तासु जमुंग अखपल अस्पताल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द प्रोग्राम तासुता स्पॉन्सर्ड कवि राजी परी प्रोग्राम के बाद तासु मुंगसरा शिरकत कवि गडून बकवि संग दिन उड़ान दी
0: मुझे
1: पदी प्रोग्राम की जो आवाज़ नहीं बल्कि मासरा जमादा
0: देवाल पर देवाल
1: मासरा पदी प्रोग्राम की मलगरतिया कर होम्योपैथिक डेर काबिल कदर काबिल एहतराम डॉक्टर डॉक्टर नूर हसन खान यूसुफ जैसी कम चिप
0: जनरल
1: सवाबई के दो पीर दौरा जिनवा

اسپتال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331. हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई की हूँ समा सहर जुड़वी नोर खोंदवर बेलाडोना गोल्ड विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश तासो हम खपल सहर समा पशान खोंदवर जुड़ गई हागम द बेलाडोना गोल्ड फेस वॉश सरा और टूल और खपल मख द मुख्तलिफ किस्म मुजिर असरातोना बचो साथ ही बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश यो नवे नुम और नवे फार्मूला आया तासु दखपल मख द तेर सरी द खातमे द पारा डेर क्रीमों ने इस्तेमाल कल तेर सरे उरक्षी और ब्याराशी आया तासु द मख तेर सरो और दागुनो तासु सर बेंतहा जदरा दस्ते दे आया तासु पर स्किन बाने दग मसलिश्ता खुतर उस पूरी तासु और ला इस किस्म क्रीम इस्तेमाल करी निधि और द आगे घट वजह तासु स्किन या इंतहाई सेंसिटिव दे इस किस्म क्रीम नशे लगो द दस किस्म ना उम्मीदा जनानो और नारीनो दोपारा द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान द तुर्की इस्तेमाल युवा खास बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश कुमचे खास फार्मूला द तिरसरो द खातमे दोपारा कुमचे तीर खास फार्मूला

रुन नयम हर सुविनम दासुम का हर सुविन गोरे बेलडोना चारकोल ब्लीच दर नहीर नशी जी जांगले द कॉस्मेटिक्स दुकान जरूर वाखली और बेलडोना चारकोल ब्लीच बखपल जुन जिंदगी की जरूर शामिल की।